0: पाठ पढ़ थका तृष्णा हुए
1: वाहिगुरु जी
0: काची
1: का
0: पिंडी शब्द न चीने उधर
1: वाहिगुरु जी की फतेह दोहराए आज्ञा पही अकाल की
0: गुरु के शब्द एक लिव लागी तेरे।

एक ओंकार सतगुरु प्रसाद जय कर कीर्त रखिए करते काहे विचारों तित कर गावो सोहिला सिमरि हो सजनहारो तुम गावहो मेरे निरभउ का सोहिला हउ वारी जित सोहिला सदा सुख होइ रहा नित नित जीअड़े संभालियन देखेगा दे मनहार तेरे दाने कीमत ना पवै तिस दाते कवन समार संबत साहा लिखिया मिलकर पा बहुत तेल देहो सजन आशीषड़ियाँ जो हो साहिब स्यों मेल घर कारे हो पहुँचा सदड़े नित पवन सदनहारा सिमरिय नानक से दे वन राग आसा महला पहला छे कर छे गुर छे उपदेस गुर गुर एको वेसे अनेक बाबा जय कर करते कीरत होए सो कर राख वडाई तुए रहाओ विसै तसिया घड़िया पहरा थिती वारी माहो होवा सूरज एको रुत अनेक नानक करते के वेस राग तना श्री महला पहला गगन मैं थाल रब चांद दीपक बने तारिका मंडल जनक मोती धूप मल आनलो पवन चवरों करे सगल बन राय फूलंत ज्योति कैसी आरती होए

सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं कर्म सर्वं तर्पणं सर्वं युक्ता सर्वं मुक्ता रिशावल सांद्वा प्रसाद नमो दर्कनासे सदैवं प्रकाशे अनंगं सर्वे अपंगं विभुते परमात्मं परमाते सदा सर्वसाते अगाध स्वरूपे निर्भाव मुदे अनंगी अनामे त्रभंगी त्रकामे नृभंगी स्वरूपे सर्वंगी अनुपे ना पुत्र न पुत्र न सत्र न मित्र न ताता न माता न जाता न पाता

करत समाय। अंतर सतगुर गुरु सब पूजे, सतगुर का दर्श देखे सब आए। मनिए सतगुर परम विचारी, जित मिले तिसना भुख सब जाए।

गर्भ करत है देह को बिन सैशन में मीत, जे प्राणी हर जस कहे ओ नानक ते जग जीत, जे कट सिमरन राम को सो नर मुक्ता जान।

जाकै सम नहीं कोए, जे सिमरत संकट मिटे दर्श तुहारो होए। मुंदावणी महला पंजवा। थाल विच तन वस्तु पईओ सत संतोख विचारो, अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सब सधारो। जे को खावे जे को पुंचे तिस का होए उधारो, ए वस्तत जी नह जाई नित नित रख उर तारो।

वाला राग एक संग पंच बरंगन संग अला पहे अठौ नंदन। प्रथम राग पहरो वै कर ही पंच राग नी संग उचर ही। प्रथम पहर भी बिलावली पुन्याकी गावह बंगली। पुनवस लेखी की पई बारी ए पहरव की पांचौ नारी। पंचम हर्ख दिसाख सुनावह बंगालम माध माधव गावह। ललत बिलाव लगाव ही अपनी अपनी पां। आसट पुत्र पहरव के गावह गायन पात्र। द्वितीया माल कौशक आला पह संग रागनी पां। चौथा पह गोण करी अर देव गंधारी गंधारी सीहुति उचारी। तनासरी ए पांचौ गाई मार राग कौशक संगलाई। मारू मस्त अंग मेवारा प्रबल चंड कौशक उभारा। खाऊ खटे औ पौरा नंद गाए अष्टमाल कौशक संगलाए। पुन आयो हिंडोल पंच नार संग अष्ट सुत। उठ है तान कलोल गायन तार मिला वही। ते लंगी देव करी आई बसंती संदूर सुहाई। सरस अहिरी लै पार जा संग लाई पांचौ वार जा। सुरमानंद पास कर आए चंद्र बिंब मंगलन सुहाए। सरस बान्यो आहे बिनोदा गावे सरस बसंत कमोदा। अस पुत्र मैं कहे सवारी पुन आई दीपक की बारी। कशली पट मंजरी टोडी कही अलाप। का मोदी औ गुजरी संग दीपक के थाप। का लंका कुंतले और रामा कमल कुसुम चंपक के नामा। गौराव कनरा कल्याण अष्ट पुत्र दीपक के जाना। साव मिल श्री राग वह गाव है पांचौ संग बरंगन लाव है। बैरारी करनाटी तरी गौरी गाव है आसावरी। ते पाछ है सिंध भी अलापी श्री राग स्यो पांचौ थापी। सालू सारग सागराया और गुण गंभीर। अष्ट पुत्र श्री राग के गुंड कुंभ हमीर। खष्टम मेघ राग वह गाव है पांचौ संग बरंगन लाव है। सोठ गोण मलारी तुनी पुन गा।

दुख सब विसारना, अंगीकार ओह करे तेरा कार्य सब सुवारना, सबना गल्ला समरथ स्वामी, सो क्यों मनो विसारे, कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले। साचे साहिबा क्या नाही करते रे, करता तेरे सब किश है, जिस देहे सो पावे, सदा सिफत सलाह तेरी, नाम मन बसावे, नाम जिनकै मन वसिया वाजे शब्द कनेरे, कह नानक सच्चे साहेब क्या नहीं करते रह, साचा नाम मेरा आधारो, साच नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब गवाइया, कर शांत सुख मन आए वसया, जिन इच्छा सब पुजाइया, सदा कुर्बान कीता गुरु विटो, जिस दियां ये वड़ियाइया, कह नानक सुनो संत हो, शब्द धरो प्यारो, साचा नाम मेरा आधारो, वाजे पंच शब्द तित कर सुभागै, घर सुभागै शब्द वाजे कला जित घर धारिया, पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया, तुर कर्म पाया।

तदयागी अरदास मारी जियो पिंडा सब तेरा वाहेगुरु कहो नानक सब तेरी वडियाई कोई नाउ न जाने मेरा वाहेगुरु। बोलो जी वाहेगुरु। अरदास एक ओंकार वाहेगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमरकै गुरु नानक लई त्याय फिर अंगद गुरुदेव अरदास रामदास हुई सहाय अर्जन हर गोबिंद रों सिमरों श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई जिह डठे सब दुख जाय तेग बहादुर सिमरिया कलनोन दया बैताई सब थाई होए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी सब थाई होए सहाय।

की पैज पंथ की जीत श्री साहब जी सहाय खालसे जी के बोल बाले बोलो जी वाहिगुरु।

सुखमनी सुखमृत प्रभ नाम भक्त जना के मन विश्राम रहाओ। प्रभ का सिमरन गर्भ न बसै, प्रभ का सिमरन दुख जम नसै। प्रभ का सिमरन काल प्रहरै, प्रभ का सिमरन दुश्मन टरै। प्रभ सिमरत कछु बिघन न लागै, प्रभ का सिमरन अनदिन जागै। प्रभ का सिमरन भउ न व्यापै, प्रभ का सिमरन दुख न संतापै। प्रभ का सिमरन साध कै संग, सर्ब निदान नानक हर रंग। प्रभ का सिमरन रिद सिद्ध नौ निद, प्रभ का सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध। प्रभ का सिमरन जप तप पूजा, प्रभ का सिमरन बिनसे दूजा। प्रभ का सिमरन तीर्थ शनानी, प्रभ कै सिमरन दुर्गह मानी। प्रभ कै सिमरन होए सो भला, प्रभ कै सिमरन सफल फला।

प्रभु को सिमर से पतवंते प्रभ को सिमर से जन प्रवान प्रभु को सिमर से पुरख प्रधान प्रभु को सिमर से बे मोहताजे

तपी सरथी वे अगन माहे होमत प्राण कनकाय सब है वर भूम दान न्यौली कर्म करै बो आसन जैन मार्ग संजय में अत्साधन नमक निमक कर शरीर कटावे तौ पी होमे मैल न जावै हर के नाम समसर कछ नाहे नानक गुरमुख नाम जपत गत पाहे मन कामना तीर्थ दे छुटै गर्भ गुमान न मन ते हुटै सोच करै दिन सियर रात मन की मैल न तन ते जात इस देही को बहु साधना करै मन ते कबहू न बिखिया टरै जल धोवे बो देह अनीत शुद्ध कहाँ होय काची पीत मन हर के नाम की महिमा ऊच नानक नाम उदरे पतत बहुमूच बहु सियान पजम का पौ ब्यापै अनक जतन कर तृष्ण त्रापै भेख अनेक अग नहीं बुझै कोट उपाव दरगै नहीं सिजै छूट स नाही ओब पयाल मोहे ब्यापे माया जाल अवर कर तू सगली जम डाने गोविंद भजन बिन तिल नहीं मानै हर का नाम जपत दुख जाए नानक बोलै सहज सुपाए चार पदार्थ जे को मांगै साध जना की सेवा लागै जे को अपना दुख मिटावै हर हर नाम हृदय सदगावै जे को अपनी शोभा लोरै साध संगे हउमै शोरै जे को जन मरण ते डरै साध जना की सरणी परै

मिथ्या त्रोहो मोह अभिमान मिथ्या आपसी ऊपर करत गुमान अस्थिर भगत साधकी शरण नानक जप जप जीवे हर के चरण मिथ्या श्रवण पर निंदा सुनहे मिथ्या हस्त पर दर्ब को हिर है मिथ्या नेत्र पेखत पर तिरया रुपाद मिथ्या रसना

मन आठ पैर कर तिसका ध्यान, जे प्रसाद तुम आचार बिहारी, तिस प्रभ को सा सा चितारी, जे प्रसाद सा सुंदर रूप।

ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टि अमृत बरसी। ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता, ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान।

भगवंत भगत का रंग सगल त्यागे दुष्ट का संग मन ते बिन सह सगला परम कर पूजै सगल पार ब्रह्म साध संग पापा मल खोवै तिस भगवती कीमत उत्तम होवै भगवंत की टहल कर।

रचना प्रभ रची बहु विद अनक प्रकार अष्टपदी कई कोट होए पुजारी कई कोट आचार बिहारी कई कोट पय तीर्थवासी कई कोट बन परमे उदासी कई कोट वेद के स्रोते कई कोट तपीसर होते कई कोट आत्म ध्यान तारे कई कोट कब का विचार है कई कोट नम तन नाम त्यावै

कबहू तट तीरथ स्नान, कबहू सिद्ध साधक मुख ज्ञान, कबहू कीट हस्त पतंग होय जिया।

संत का दुखी सदा विकारी, संत का दुखी जन्म मरे, संत की दुख न सुख ते टरे, संत के दुखी को नाही ठाओ, नानक संत पावेता ले मिलाए, संत का दुखी अद बीच ते टूटे, संत का दुखी किते काज ना पूछे, संत के दुखी को ध्यान परमाइए, संत का दुखी उजड़ पाइए, संत का दुखी अंतर ते थोथा, जूं सांस बिना मिलत की लोथा, संत के दुखी की जड़ किश नाहे, आपन बीज आपे ही खाहे, संत के दुखी को अवर न रखन हार, नानक संत पावे तन लई उबार,

अपना खेल आप करने हार, दूसर कौन कह विचार, जिसनों कृपा करै तिसे अपन नाम दे। बड़ भागी नानक जन से सलोक, तजो सियान पसुरजनो, सिमरो हर हर राय, का सर मन रखो, नानक दुख परम को जाए, अष्टपदी मानुकी टेक बिरथी सब जान, देवन को एक भगवान, जिसके दिए रहे अकाए, बौर न तृष्णा लागे आए, मारे राखे को आप, मान क्या किश नाही हाथ, इसका हुक्म भू सुख होए, तिसका नाम रख कंठ पर होए, सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए, नानक बिघन न लागे कोए, उस्तत मन में कर निरंकार, कर मन मेरे सत व्यवहार,

हर प्रवचीत भगत भगत सुनिए तेह लोए जाके हृदय एको होए सच करनी सचता की रहत सच हृदय सतमुख कहत सच इंद्र सच आयाकार सच वर्त सच पासार पार ब्रह्म सच कर।

जैसो होवे सुप्रसन्न अष्टपदी अविनाशी ब्रह्मन मैं राख मानुख की तू प्रीत त्याग तिस्ते परे नाही किश कोय सर्व निरंतर एको सोए आपे बिना आपे दाना गैर गंभीर गहीर सुजाना

आनंद रूप मंगल सज्जा कै सर्वथोक सुनिय करता कै राज महराज जोग मह जोगी तप मह तपी सरगृहस्थ मह भोगी त्याए त्याए भगत है सुख पाया नानक तस पुरख का किनै अंत ना पाया।

नाना रूप नाना जाके रंग नाना पे करहे करंग नाना बिद कीनो विस्तार प्रभ नासी एकंकार नाना चलत करे खिन माहे पूर रहे ओ पूर्ण सब ठाए नाना बिद कर बंत बनाई अपनी कीमत आपे पाए सब घट तिसके।

मन नाम के धारे, सिमृत वेद पुराण नाम के धारे, सुनन ज्ञान ध्यान नाम के धारे, आकाश पाताल नाम के धारे, सगले आकार नाम के धारे, पुरिया सब पवन नाम के संग उदरे, सुन श्रावण कर कृपा, जसु अपने नाम लाए, नानक चौथे पद में सोजन गत पाए, रूप सत जाका सत स्थान, पुरख सत केवल प्रधान, करतूत सत सत जाकी बाणी, सत पुरखो सब माहे समाणी, सत कर्म जाकी रचना सत, मूल सत सत उत्पत सत करनी, निर्मल निर्मली जिसह बुझाए, तसह सब भली सत नाम, प्रभु का सुखदाई विश्वास, सत नानक गुरते पाए, सत बचन साधु उपदेश, सत्य जन जा कैर दै प्रवेश, सत निरत बूझै जे कोई, नाम जपता की गत होए, आप सत किया सब सत, आपे जाने अपनी मित गात, जिसकी सृष्टि

सो क्यों बिसरे जे अगन में रखे गुर प्रसाद को बिरला लाख सो क्यों बिसरे जे बिखते काडे जन्म जन्म का टूटा गांडे गुरपुरे ता तू यह बुझाया प्रभ अपना नानक जन त्याया साजन संत करो ए हुकाम मान त्याग जपो हर नाम सिमर सिमर सिमर सुख पावो आप जपो अवरह नाम जपाव भगत पाए तरिय संसार बिन भक्ति तन होसी शार सर्व कल्याण सुख निद नाम बूट जात पाए बिश्राम सगल दुख का होत नाश नानक नाम जपो गुणतास।

अबिनाशी सुखे अपने आसंतह जन मरण कहो कहा बिना संजप पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो किस होए। जब अभिगत अगोचर प्रवेका

पहुचा। दया प्रचु प्रपंच कार ते हुगुण महकी नो विस्तार पाप पुन्न तह पई कहा उत्को नरको सुर्ग बंचा।

जन लागा हर एक नाए तसकी आस न बिरथी जाए सेवक को सेवा बने आए हुकम बूझ परम पद पाए इस ते ऊपर नहीं विचार जाके मन बसिया निरंकार बंधन तोर पै निर्वैर अंदन पूजे गुर के पैर।